उकावाड़ानी की बना हूँ। सिड़ सिड़ की वो वोनी रोई रोई की इजा आड़िया बिकामी था ही इदा सिड़ सिड़ की इथोनी नी दियोगा की इदा सिड़ सिड़ की हा नाजा जा खानी नी दियोगा की जाबुनी हा नाजा जा उखानी।